जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026

0: से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: मानव जीवन में व्यक्ति जे कई विचारे छे तेहू तेना जीवन में बनतु होय छे। जेवा जेना विचारों अने कल्पनाओं तेवा तेना कार्यों ने परिणामों होय छे। नेपोलियन बोनापार्टनी अनेक वातो तमे सांभळी हशे, वांची हशे। ते केवुं व्यक्तित्व हतुं के जेमना मां निर्भयता, अडगता, आत्मविश्वास, त्वरित निर्णय शक्ति, नेतृत्व जेवा अनेक सद्गुणोनो खजानो हतो। तेमणे कहेलुं के अशक्य जेवो शब्द मारा शब्दकोशमां नथी। અને આ વાત પરથી આપણે પણ એ જ શીખ મેળવવી જોઈએ કે કોઈ પણ કાર્ય અઘરું નથી હોતું, એ કાર્ય કરવા માટેની ધગશ આપણામાં હોવી જોઈએ। તમે સાંભળી રહ્યા છો રેડિયો પાલનપુર। મસ્ત રહો, વ્યસ્ત રહો અને સાંભળતા રહો રેડિયો પાલનપુર।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: महाभारत में जेम अर्जुने तेनी कुशलता कौशल्यो महावरो अने अड़क आत्मविश्वास थकी लक्ष्य वेद करेल, तेज रीते वर्तमान जगत में पण अनेक नर नारी अपेक्षित लक्ष्य वेध्या छे। लक्ष्य प्राप्ति ही लक्ष्य ना एकमात्र विचार साथी अनेक लोको आ दुनिया में पोतानुं धारेलुं काम पार पाड़ी शक्या छे। आवा स्वप्न सौदागरोनो एक ज संदेश होय छे, सपना हमेशा मोटा जुओ, निशान चूक माफ नहीं, माफ नीचू निशान। निशान प्राप्ति नी पथ मा निष्फळता आवे तो तेने जोर थी लात मारी ने तेमाथी पाठ जाणी ने आगळ वधी जाओ। नवो दिवस नवो पड़कार, जजूमो अने सफळ थाओ। आ संदेश ने जीवन मा उतारी चौक्कस लक्ष्य बनावी तेने प्राप्त करवा वीर योद्धानी जेम झजूमी छेल्ले लक्ष्य वेद करी सफळतानु मीठो मधुरु स्वाद चाखी सकनारी व्यक्तिओ मानु एक व्यक्तित्व बनो। तमे सांभळी रह्या छो रेडियो पालनपुर 90.4 FM। मस्त रहो, व्यस्त रहो, ने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।

जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री

0: मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: હેલો હાય નમસ્કાર, તમે સાંભળી રહ્યા છો ધ્રુવ ભટ્ટ લિખિત તત્વમસી। મોસમનો પહેલો વરસાદ કદાચ

एक साथ बोली उठ्या, नहीं जाने दे डाकिन भाई तो मानी पड़ेगी, काट के जलावेंगे। एम जीवता माणसे कापी न नखाय। मैं हवे बीक बतावता कहू, हूँ थाणा में खबर करीश तो पुलिस पकड़ी जशे ने पूरी देशे। जवाब में पेला लोग कई न बोलिया, पर एक डायो बोलियो, डाकिन को मारे है पुलिस को का लेना देना, मानुस को थोड़ा मारते है। अने अमारा अज्ञान पर ते थोड़ू हस्यू। पूरिया क्या छे? सुप्रिया उच्च स्वरे पूछू, पर कोई जवाब ना आप्यो। क्या छे पूरिया? तेने फरी पूछी ने पूरिया नी मानो खबो पकड़ी ने तेने हल बुलावी नाखी। बंद की थी है मारे घर में। सुप्रिया आगळ कई बोलिया वगर सामेना बंद बारणा वाला घर तरफ गई। हूँ पण पाछळ गयो, बीजा कोई अमने रोक्या नहीं, तेथी मने नवाई पण लागी अने निरांत पण थई। सांकळ खोली तो सामे पूरिया, तेना हाथ ने गाले लुईना डागा हता, कदाच तेने बाळकना मृतने वहाल कर्यो हशे। चाल पूरिया उभी था। सुप्रियाए अंदर जता वीत पूरियानो हाथ पकड्यो। छोड़ छोड़ मुने, पूरियाए आँखों फाड़ीने जवाब आप्यो। मारा आश्चर्यनी सीमा न रही, पूरिया स्वयं सुप्रिया ने आंग कहे ते हूँ जोवा सांभळवा छता मानी न शक्यो। पूरिया चाल उभी था। मैं पण कह्यु। तमे सांभळी रह्या छो रेडियो पालनपुर पर ध्रुव पटले खेत तत्वमसी। क्यां जता नहीं, जोड़ेला रहो रेडियो पालनपुर साथी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। करते हैं शुरुआत गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी जी द्वारा भेजे गए सुविचार के साथ। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। सचमुच कैसे नादान हैं हम सब। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है श्रोता मित्रों, जीवन को जीने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं, जल है तो कल है, वृक्ष है तो फल है। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। मिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी, और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज के प्रेरक प्रसंग में एक बार फिर से हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को, जब अंग्रेजी शासन का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। हम आजादी के बहुत से अमर शहीदों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम तीन ऐसे नौजवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लगभग नहीं के बराबर। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मात्र 18, 19 या 22 साल के तीन आजादी के दीवाने नौजवान अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित सरकारी भवन में घुस गए थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? असंभव सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ। वे तीन जवान थे, बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उन दिनों कोलकाता में अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दफ्तर था जो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे। ये 8 दिसंबर 1930 की घटना है। सामान्य दिन था। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर यानी राइटर्स बिल्डिंग में आ चुके थे और अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण जगह होने के कारण वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुरक्षा का घेरा तोड़कर बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता उस भवन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग दोपहर की बात है, वे तीनों युवा क्रांतिकारी भवन में घुस गए। उस दफ्तर में कई भारतीय भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसा पहनावा पहना और अंदर प्रवेश किया। उनके निशाने पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सिम्पसन, जो जेलों में भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात माने जाते थे। और देखते ही देखते तीनों ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन पर गोली चला दी। कर्नल की वहीं मृत्यु हो गई। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। तो श्रोताओं, आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वे तीनों वहां से निकलने में सफल हुए? इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वे समझ गए थे कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। तो नौजवान बादल गुप्ता और बिनॉय ने स्वयं को गोली मार ली। बादल गुप्ता की वहीं पर मृत्यु हो गई। बिनॉय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1930 को उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके साथी दिनेश गुप्ता घायल अवस्था में पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और 7 जुलाई 1931 को अलीपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश ने इन तीनों की स्मृति को कैसे जीवित रखा। कोलकाता के बेहद प्रसिद्ध डलहौजी हाउस का नाम बदलकर बीबीडी बाग यानी बादल, बिनॉय और दिनेश रखा गया और एक स्मारक बनाया गया। श्रोताओं, एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि हम इन क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान को आभार के साथ याद करते हैं, लेकिन हिंसा को जीवन का रास्ता नहीं मानते। हम बस उस दौर के इतिहास को उस समय के संदर्भ में समझते हैं। तो श्रोताओं, जब हम बीडीडी बाग का नाम सुने तो केवल उसे कोलकाता की एक जगह समझकर नजरअंदाज न कर दें। हम जरूर याद करें इन क्रांतिकारी युवाओं को, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आजादी को केवल एक विशेषाधिकार की तरह ही नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह भी देखें, और जिन्होंने देश के लिए अपना आज दे दिया, हम उनके बलिदान को याद करके अपने आज को बेहतर बनाएं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। आप 8800044559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।

0: और हाँ, ताजा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बरसात और मेंढक। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पशु पक्षियों और संपूर्ण जीव जगत का ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।
1: बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।

0: पास घास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
4: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
5: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए।

0: टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए।

0: नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में रूस के एक भालू से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए।
2: साथियों नमस्कार।
3: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
3: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए, जरा बताइए तो।
2: अच्छा चलिए हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
3: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
2: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।

0: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
1: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
0: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे

0: और भी बहुत अच्छा कर सकती हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
1: और अब सुनते हैं एक सुंदर गीत।
2: फूल सी गुड़िया हमारी,

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: તમે સાંભળી રહ્યા છો 90.4 FM રેડિયો પાલનપુર। હું પ્રિયરાજ સૌ બાળ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું બાળ સભામાં।
5: વાઘ અને યાત્રી। એક દિવસ એક વૃદ્ધ વાઘ જંગલમાં કાદવ ભરેલા તળાવની નજીકથી પસાર થતો હતો ત્યારે તેની નજર એક સોનાની બંગડી ઉપર પડી।
6: ચાલો આ રાખી લઉં છું, કઈ કામ આવશે। એ ખડવા માટે લાલચ તો મળી, હવે શિકારની રાહ જોઉં છું।
5: એ જ સમયે એક યાત્રી તળાવના બીજા કિનારાથી પસાર થતો હતો। ત્યારે તેની નજર યાત્રી પર પડી।
6: આહ, મનુષ્ય બહુ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે અને લાલચી પણ। અરે સાંભળો, સાંભળો તો,

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: गया।
1: अरे आ गामड़ाओमां पण प्रोडक्टने पहोंचाड़वी छे अने मारे तो आ प्रोडक्टने दरेक खूणा सुधी पहोंचाड़वी छे अंजलि।
2: तो पछी आ प्रोडक्टनी एडवर्टाइजमेंट तमे रेडियो पालनपुर पर आपी दो ने।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: श्रीवास्तव जी, आप हमारा कारपूल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते?
2: कारपूल से मेरा क्या फायदा?
1: मैं टिफिन में अक्सर कद्दू की सब्जी लाता हूँ।
2: मैं कद्दू खाता ही नहीं।
1: सुनिए तो, हमारा कारपूल ज्वाइन करने से आपके और हम सबके घर में एक नया LCD आ सकता है।
2: LCD? वो कैसे?
1: देखिए, कारपूल से सालाना 50,000 रुपए तक बचा सकते हैं। इस बचत से हम सब नया LCD ले सकते हैं। आखिर बात तो एक ही है ना।
3: सेव फ्यूल यानी सेव मनी।
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

पक्का पालनपुरी न्यू ओला केटले ट्यून रहे मस्त रहे सामल दूर रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: नमस्कार दोस्तों, हूँ आरजे हर्ष भटारिया, रेडियो पालनपुर 90.4 एफएम थी। आज आपने बात करीशू गुलजार साहेब नी। यस, गुलजार साहेबे लखेला केटलाक मशहूर गीतो, नज़्मो, शायरीओ, गजल, रोमांटिक कॉर्ड्स बधुं एटलुं सुंदर रीते लखेलुं छे के हजी पण आपणा होठो पर ते हमेशा रहे छे। गुलजार साहेब आजे पण पोताना शब्दोनो जादू बधाना दिलो पर राज करे ए रीते लखे छे। तो આજે આપણે સાંભળીશું ગુલઝાર સાહેબના અવાજમાં કેટલી નઝમો અને સાથે સાથે એમણે લખેલા કેટલાક સુંદર મજાના ગીતો। તો બન્યા રહો રેડિયો પાલનપુર 90.4 એફએમ પર।
3: સાંસ લેના ભી કૈસી આદત હૈ, જીએ જાના ભી ક્યા રવાયત હૈ। સાંસ લેના ભી કૈસી આદત હૈ, જીએ જાના ભી ક્યા રવાયત હૈ। कोई आहट नहीं बदन में कहीं, कोई साया नहीं है आंखों में, पांव बेहिस हैं चलते जाते हैं, एक सफर है जो बहता रहता है। कितने बरसों से कितनी सदियों से जिए जाते हैं जिए जाते हैं। आदतें भी अजीब होती हैं, सांस लेना भी कैसी आदत है। सिर्फ एहसास कि तुम पास हो बस, सिर्फ एहसास के नजदीक हो तुम। अनगिनत लोगों में घबराई हुई, अजनबी आंखों से लज्जाई हुई, तन पे लगती हैं चिपकती आंखें, बर्फ सी ठंडी सुलगती आंखें। अनगिनत नजरों में उलझा लिपटा, अनगिनत चेहरों में रखा चेहरा, सैकड़ों ताव

मुरझाई हुई, सहमी सिमटी हुई, शर्माई हुई। सिर्फ एहसास के पास हो तुम, सिर्फ एहसास के नजदीक हो बस। सुनहरी कूंजें जब उड़ते उड़ते उफक की टहनी पे बैठ जाएं, तुम्हारे कंधों पे झुक के जब शाम बोसा ले ले, चराग खोलें जब अपनी मध्यम उदास आंखें, तुम अपने चेहरे पे खींच लेना हया का आंचल, मैं हौले हौले मना के आंचल उतार लूंगा। तुम्हारे होंठों के ठंडे ठंडे गुलाब आंखों पे रख के मैं रात को सुनाऊंगा फिर उसी नींद की कहानी, वो नींद जो जागते मिली थी तुम्हारी आगोश के सुकून में। ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम, बहुत जी चाहता है फिर से बोऊं अपनी आंखें, तुम्हारे ढेर से चेहरे उगाऊं और बुलाऊं बारिशों को, बहुत जी है कि फुर्सत हो, तसव्वुर हो, तसव्वुर में जरा सी बागबानी हो। मगर जाना एक ऐसी उम्र में आकर मिली हो तुम, किसी के हिस्से की मट्टी नहीं हिलती, किसी की धूप का हिस्सा नहीं छिनता, मगर अब मेरी क्यारी में लगे पौधे किसी को पांव रखने के लिए भी था नहीं देते। ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम।

बस एक ही सुर में एक ही लय पे सुबह से देख देख कैसे बरस रहा है उदास पानी। फुहार के मलमली दुपट्टे से उड़ रहे हैं, तमाम मौसम टपक रहा है, पलक पलक रिस रही है ये कायनात सारी। हर एक शय भीग भीग कर देख कैसी बोझल सी हो गई है, दिमाग की गीली गीली सोचों से भीगी भीगी उदास यादें टपक रही हैं। थके थके से बदन में बस धीरे धीरे सांसों का गर्म डूबान जल रहा है।

गुलजार साहेब एक बहुत मजानी बात कहे छे कि कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए, कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर

0: પહેચાન છીન લેતી હૈ. સાંભળીએ આપણે ગુલઝાર સાહેબ ને, પછી સાથે એમનું બેક ટુ બેક મસ્ત મજાનું સોંગ સાથે.
1: યાદ હૈ એક દિન મેરે મેઝ પે બેઠે બેઠે સિગરેટ કી ડિબિયા પર તુમને છોટે સે એક પૌધે કા એક સ્કેચ બનાયા થા. યાદ હૈ એક દિન મેરે મેઝ પે બેઠે બેઠે સિગરેટ કી ડિબિયા પર તુમને છોટે સે એક પૌધે કા એક સ્કેચ બનાયા થા. આકર દેખો ઉસ પૌધે પર ફૂલ આયા હૈ. कर देखो उस पौधे पर फूल आया है. दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे. दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे. लबों की मध्यम तवील सरगोशियों में सांसें उलझ गई थीं. ऊंधे हुए साहिलों पे जैसे कहीं बहुत दूर ठंडा सावन बरस रहा था. बस एक ही रूह जागती थी. बता तो उस वक्त मैं कहां था. बता तो उस वक्त तू कहां थी. कभी कभी जब मैं बैठ जाता हूं अपनी नज्मों के सामने निस्फ दायरे में, मिजाज पूछूं कि एक शायर के साथ कटती है किस तरह से, वो घूर के देखती हैं मुझको. सवाल करती हैं उनसे मैं हूं या मुझसे हैं वो. वो सारी नज्में कि मैं समझता हूं वो मेरे जीन से हैं, लेकिन वो यूं समझती हैं उनसे है मेरा नाक नक्शा. ये शक्ल उनसे मिली है मुझको. मिजाज पूछूं मैं क्या, एक नज्म आगे आती है छू के पेशानी पूछती है. बताओ अगर इंतशार है कोई सोच में तो मैं पास बैठूं, मदद करूं और बीन दूं उलझने तुम्हारी. उदास लगते हो एक कहती है पास आकर, जो कह नहीं सकते तुम किसी को. तो मेरे कानों में डाल दो राज अपनी सरगोशियों के, लेकिन अगर एक सुनेगा तो सब सुनेंगे. भड़क के कहती है एक नाराज नज़्म मुझसे, मैं कब तक अपने गले में लूंगी तुम्हारी आवाज की खराशें. एक और छोटी सी नज्म कहती है, पहले भी कह चुकी हूं शायर, चढ़ान चढ़ते अगर तेरी सांस फूल जाए तो मेरे कंधों पर रख दे कुछ बोझ मैं उठा लूं. वो चुप सी एक नज्म पीछे बैठी जो टकटकी बांधे देखती रहती है मुझे. बस न जाने क्या है कि उसकी आंखों का रंग तुम पर चला गया है. अलग अलग हैं मिजाज सबके, मगर कहीं ना कहीं वो सारे मिजाज मुझ में बसे हुए हैं. मैं उनसे हूं या हाँ, मुझे ये एहसास हो रहा है जब उनको तखलीक दे रहा था वो मुझको तखलीक दे रही थी. एक नकल तुझे भी भेजूंगा, ये सोच के ही तन्हाई के नीचे कार्बन पेपर रख के मैं ऊंची ऊंची आवाज में बातें करता हूं. अल्फाज उतर आते हैं कागज पर, लेकिन आवाज की शक्ल उतरती नहीं. रातों की स्याही दिखती है. जैसे झन्ना के चटक जाए किसी साज का एक तार, जैसे रेशम की किसी डोर से कट जाती है उंगली, ऐसे एक जर्ब सी पड़ती

होती है कहीं सीने के अंदर खींच कर तोड़नी पड़ जाती हैं जब तुझसे निगाहें। तेरे जाने की घड़ी आह बड़ी सख्त घड़ी है।

बस एक झगड़े का लम्हा था। दरो दीवार पर ऐसे छनाके से गिरी आवाज जैसे कांच गिरता है। हर एक शय में गई उड़ती हुई जलती हुई किरचें, नजर में, बात में, लहजे में, सोच और सांस के अंदर। लहू होना था एक रिश्ते का, सो वो हो गया उस दिन। उसी आवाज के टुकड़े उठा के फर्श से उस शब्द किसी ने काट ली नब्जें, न की आवाज तक कुछ भी कि कोई जाग न जाए। कुछ ऐसे आकर गिरा है सोते में शाख से फूल मेरे चेहरे पे, जैसे हौले से रात तुम नाम लेके मुझको जगा रही थी। सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे चलता था जब तुम थी। रात भी वैसे ही सर मूंदे आती है, दिन वैसे ही आंखें मलता जागता है। तारे सारी रात जमाइयां लेते हैं। सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे चलता था जब तुम थी। काश तुम्हारे जाने पर कुछ फर्क तो पड़ता जीने में। प्यास न लगती पानी की, या नाखून बढ़ना बंद हो जाते। बाल हवा में न उड़ते, या धुआं निकलता सांसों से। सब कुछ वैसे ही चलता है, बस इतना फर्क पड़ा है मेरी रातों में। नींद नहीं आती तो अब सोने के लिए एक नींद की गोली रोज निकलनी पड़ती है। खोल कर बाहों के दो उलझे हुए मिसरे, होले से चूम के दो नींद से छलकी पलकें, होंठ से लिपटी हुई जुल्फ को मिन्नत से हटा कर कान पर धीमे से रख दूंगा जो आवाज के दो होंठ। मैं जगाऊंगा तुझे नाम से सोना, और तुम धीरे से जब पलकें उठाओगी ना, उस दम दूर ठहरे हुए पानी पे सहर खोलेगी आंखें। सुबह हो जाएगी तब, सुबह जमीन पर। रात भर सर्द हवा चलती रही, रात भर हमने आला होता पा। रात भर सर्द हवा चलती रही, रात भर हमने आला होता पा। मैंने माजी से कई खुश्क सी शाखें काटी हैं, ने भी गुजरे हुए लम्हों के पत्ते तोड़े। मैंने जेबों से निकाली सभी सूखी नज़में,

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
2: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में

0: अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: नौ बरस लंबी थी ना।

ओस पड़ी थी रात बहुत और कोहरा था गर्माइश पर, सीली सी खामोशी में आवाज सुनी फरमाइश पर। फासले हैं भी और नहीं भी, नापा तोला कुछ भी नहीं। लोग बजिद रहते हैं फिर भी रिश्तों की पैमाइश पर। मुंह मोड़ा और देखा कितनी दूर खड़े थे हम दोनों। आप लड़े थे हमसे बस एक करवट की गुंजाइश पर। कागज का एक चांद लगाकर रात अंधेरी खिड़की पर, दिल में कितने खुश थे अपनी फुरकत की आराइश पर। रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है। जागते जीते हुए दूधिया कोहरे से लिपटकर, सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है। रूह देखी है कभी। या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती हूं टलियां, सुबकियां लेती हवाओं के वो बैन सुने हैं।

0: 14वीं रात के बर्फाब से एक चांद को जब ढेर से साए पकड़ने के लिए भागते हैं, तुमने साहिल पे खड़े गिरजे की दीवार से लगकर अपनी गहनाती हुई कोख को महसूस किया है। रूह देखी है कभी? जिस्म 100 बार जले तब भी वही मट्टी का ढेला, रूह 1 बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। रूह देखी है कभी? रूह को महसूस किया है।
1: ज्यादे
0: कल की रात गिरी थी शबनम, हौले हौले कलियों के बंद होंठों पर बरसी थी शबनम, फूलों के रुखसारों से रुखसार मिलाकर नीली रात की चुंदरी के साए में शबनम परियों के अफसानों के पर खोल रही थी। दिल की मध्यम मध्यम हलचल में दो रूहें तैर रही थीं, जैसे अपने नाजुक पंखों पर आकाश को तोल रही हों। कल की रात बड़ी उजली थी, कल की रात उजले थे सपने, कल की रात तेरे संग गुजरी। वो जो शायर था चुप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पर रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें, जमा करता था चांद के साए, गीली गीली सी नूर की बूंदें, ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते। वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ, वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की थोड़ी चूमा करता था। कल सुना है जमीन से उठ गया है वो। तेरी आंखों से ही खुलते हैं सवेरों के उफुक, तेरी आंखों से ही बंद होती है ये सीप की रात, तेरी आंखें हैं या सजदे में गमगीन नमाजी। पलकें खुलती हैं तो यूं गूंज के उठती है नजर, जैसे मंदिर से जरस की जले नमनाक सदा, और झुकती हैं तो बस जैसे अजां खत्म हुई है। तेरी आंखें तेरी ठहरी हुई गमगीन सी आंखें, तेरी आंखों से ही तखलीक हुई है सच्ची, तेरी आंखों से ही तखलीक हुई है यह हयात।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है

0: नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: मैं हूँ रुचि आपके साथ। वैसे आज की मेरी प्लेलिस्ट की खास बात यह है कि आज के सभी गाने पुराने तो हैं, लेकिन एक नई आवाज में हैं। वो आवाज जिसने YouTube पर जादू बिखेर दिया, वो आवाज जिसके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फैंस हैं, वो आवाज जिसे आप बखूबी जानते हैं, वो जिसने हिंदी फिल्मों के गानों को बड़ी खूबसूरती से अपने अंदाज में पेश किया और बॉलीवुड में धत तेरी की, इश्क बुलावा, फकीरा जैसे गानों से अपनी वर्सिटैलिटी भी प्रूव की। मैं बात कर रही हूँ सिंगर सनम पुरी की, जिनके बैंड का नाम भी है सनम। अब देखिए, पर्सनली मुझे इनके गाने कुछ ज्यादा ही पसंद आते हैं। एक तो इसलिए क्योंकि सनम पुरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दूसरा इसलिए भी कि जिस तरह से ये 60s, 70s, 80s के गानों को रिक्रिएट करते हैं, जो उसकी ओरिजिनलिटी थी, जो सोल है गाने की, उसके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट देयर म्यूजिक। वैसे आप शायद ये जानते नहीं होंगे कि सनम पुरी, जो कि सनम बैंड के लीड सिंगर हैं, उन्हें म्यूजिक के साथ साथ एक्टिंग का भी बड़ा शौक था। उन्होंने सोचा था कि वो एक्टिंग भी करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने फ्री स्टाइल डांसिंग की ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन थैंक गॉड उन्होंने म्यूजिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया। वैसे जानते हैं आप, सनम पुरी के बैंड का नाम पहले सनम नहीं कुछ और था। बताऊंगी इस किस्से के बारे में कुछ ही देर के बाद, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं आज का शो उनके पहले सुपर डुपर हिट कवर सॉन्ग के साथ, जो कि था लग जा गले। बड़ा ही प्यारा वर्जन है, सुनिएगा जरा।

आज के सारे पुराने गानों का कवर वर्जन सनम बैंड के बनाए हुए ये गाने जो आप सुन रहे हैं वो सभी मेरे सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। वैसे हर बैंड के फॉर्मेशन के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। सनम बैंड की कहानी ये है कि 2003 में वेंकी जो कि बेस गिटारिस्ट है और समर जो कि लिरिसिस्ट या लीड गिटारिस्ट या कंपोजर सभी चीज़ें हैं ये दोनों मस्कट में बैचमेट्स हुआ करते थे। दोनों को ही म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट था तो इसीलिए दोनों ने एक बैंड फॉर्म करने का सोचा, जिसके लिए समर ने अपने छोटे भाई सनम को कॉन्टैक्ट भी किया कि भाई तुम भी शामिल हो जाओ हमारे साथ में एज अ सिंगर। लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ये स्कूल कॉलेज में जो बैंड्स बनते हैं वो अक्सर ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि समय जो है वो सभी लोगों को अपनी अलग अलग राह में अलग अलग दिशा में भेज देता है। सनम और समर दिल्ली चले गए थे, कॉलेज के लिए इंडिया आ गए थे और दिल्ली चले गए थे और वहीं अपने कॉलेज के रॉक सर्किट्स में बिजी हो गए। सनम पुरी को उनके सिंगिंग के लिए अवार्ड्स भी मिलने लग गए थे। वहीं वेंकी बैंगलोर में बेस प्लेयर थे, बहुत सारे बैंड्स के साथ में वो प्ले किया करते थे। फिर एक कॉलेज के इवेंट के थ्रू वेंकी की मुलाकात केशव से हुई थी। फिर भी ये सभी लोगों का उस समय एक बैंड नहीं बन पाया था क्योंकि सभी लोग देश के अलग अलग कोने में रह रहे थे। फिर ईयर 2009 में समर और सनम मुंबई आए अपना म्यूजिक करियर बनाने के लिए। 2010 में सनम, केशव और समर ने एक नेशन वाइड पॉप बैंड हंट सुपरस्टार्स में पार्टिसिपेट किया था, जिसके फाइनल राउंड में वेंकी ने उन्हें ज्वाइन किया। इस हंट में सनमपुरी के बैंड ने द SQS प्रोजेक्ट के नाम से एंट्री ली थी और जहां

1600 से भी ज्यादा इंडियन बैंड्स ने पार्टिसिपेट किया था। वहां द SQS प्रोजेक्ट को विजेता घोषित किया गया, गिविंग द बैंड अ नेम ऑफ SQS सुपरस्टार्स। और कुछ ऐसे उनकी जर्नी शुरू हुई। बस उन्होंने अपने बैंड का नाम SQS क्यों रखा था और फिर सनम नाम कैसे मिला, बताऊंगी कुछ ही देर के बाद। उसके पहले सुनते हैं इसी बैंड का बनाया हुआ एक और ब्यूटीफुल गाना, वर्जन ऑफ है अपना दिल तो आवारा है।

मैं हूं रुचि आपके साथ और आज आप द सनम बैंड के सभी गाने इनके कवर वर्जन ऑफ सम ऑफ आवर फेवरेट रेट्रो सॉन्ग्स जो सुन रहे हैं। वैसे मैं बात कर रही थी कि कैसे इनके बैंड का नाम पहले द SQS प्रोजेक्ट था, वो इसलिए क्योंकि उस समय उनके बैंड में एक और एक मेंबर हुआ करते थे क्यूएश नाम से, तो इसलिए समर, क्यूएश और सनम इनके नाम पर ये SQS बना था। लेकिन म्यूजिक हंट के फाइनल्स में जब वेंकी ने उन्हें ज्वाइन किया तब इस नाम का कोई महत्व ही नहीं बचा था क्योंकि अब और भी ज़्यादा बैंड मेंबर्स हो गए थे। फिर भी उन्हें इस नाम के साथ 3 साल तक काम करना पड़ा था क्योंकि एक म्यूजिक कंपनी के साथ उनका 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। लेकिन फिर जब 3 साल पूरे हुए और उनकी मुलाकात उनके बिजनेस मैनेजर बेन थॉमस से हुई तो उन्होंने सोचा कि भाई अब एक नई शुरुआत करते हैं। वैसे नया नाम रखना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि लोगों का ये फीडबैक था कि जब भी कुछ वीडियोस या फिर इनके गानों के लिंक्स लोगों को ये फॉरवर्ड करते थे, मैसेज करते थे, तब लिंक पे क्लिक करने से पहले लोगों को ऐसा लगता था कि SQS प्रोजेक्ट एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है और इसलिए वो लोग उस लिंक पे क्लिक ही नहीं करते थे। मतलब SQS प्रोजेक्ट डिड नॉट रियली फील लाइक अ बैंड्स नेम। तो फिर सनम और उनकी टीम ने बैंड का नाम चेंज करने की ठानी। काफी डिस्कशन और कुछ 200-300 नाम सोचने के बाद, उनके नेम्स का कॉम्बिनेशन सोचने के बाद और फिर कोई भी नाम ना जमने के बाद एक दिन एक शो के पहले ये लोग ग्रीन रूम में बैठे थे और कहीं पर उन्होंने सनम इलेक्ट्रिक लिखा हुआ देखा और बस क्या था, वो देखते ही इनके दिमाग में आया कि हमारा लीड सिंगर भी सनम है। सनम एक ऐसा नाम है जो कि यूजुअली हिंदी गानों में यूज किया जाता है, तो क्यों ना बैंड का नाम भी सनम ही रखा जाए। और कुछ ऐसे सनमपुरी के बैंड का नाम सनम ही बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं सनमपुरी को म्यूजिक में अपना करियर बनाने के लिए एनकरेज किसने किया था, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक और खूबसूरत गाना। सनमपुरी की आवाज में है, सनम बैंड का ये रिक्रिएटेड वर्जन है। आई एम एक्चुअली अ फैन ऑफ दिस वर्जन ऑफ द सॉन्ग क्योंकि इतने सिंपलिसिटी से इस गाने को इन लोगों ने परफॉर्म किया है कि मैं क्या बताऊं। चलिए सुनाते हैं आपको यही गाना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।

आज हम सनम बैंड के सभी वो गाने आपको सुना रहे हैं जो कि उन्होंने 70s 80s के मेरे आपके फेवरेट गानों के रिक्रिएशन बनाए हैं, यानी कि कवर वर्जन्स बनाए हैं। और ये सभी खूबसूरत गाने आप मेरे सारे गामा कारवां से सुन रहे हैं। वैसे सनम पुरी को बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट तो था, लेकिन उन्होंने कभी किसी से प्रोफेशनली म्यूजिक सीखा नहीं था। 6 साल की उम्र से ही उन्होंने गाने गाना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट गिटार, कीबोर्ड और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने खुद ही प्ले करना सीख लिया था। लेकिन फिर भी अपने स्कूलिंग के बाद सनम दिल्ली में रहे थे 7 सालों तक, और उसके बाद जब वो मुंबई आए तब जाकर उन्होंने म्यूजिक को सीरियसली लेना शुरू किया। पर एक प्रॉब्लम थी सनम पुरी के साथ, जिसके बारे में वो खुद बताते हैं कि पहले ना वो सिर्फ गाने गाते थे लेकिन उन गानों को महसूस नहीं कर पाते थे, गानों के साथ में इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट ही वॉजंट टू कम्फर्टेबल विद म्यूजिक, क्योंकि वो बड़े शाय किस्म के थे और उन्हें ये आइडिया भी नहीं जमता था कि वो किसी और के कंपोज किए हुए गाने गाएं। सनम चाहते थे कि वो खुद ही गाने लिखें, कंपोज करें और गाएं, तब जाकर के शायद वो गाने को फील कर पाएंगे। इसीलिए उनका प्लान प्लेबैक सिंगिंग करने का था नहीं, वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही बनाना चाहते थे और अपने बैंड के साथ मिलकर

इसलिए उन्होंने खुद ही इन गानों के ऊपर वीडियोस बनाने का भी तय किया। लेकिन किस्मत ने कुछ और सोच के रखा था और उनकी बॉलीवुड में एंट्री हो ही गई। उनके गाने जैसे धत्तेरी की और इश्क बुलावा बड़े हिट बन गए। कैसे मिला था सनम को इन सॉन्ग्स को गाने का मौका, ये अपॉर्चुनिटी इनके हाथ आखिर आई कैसे, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सनम पुरी का अगला गाना सुनाते हैं आपको, 90s का सबसे रोमांटिक गाना सनम के अंदाज में। स्टे ट्यून्ड।

मैं हूँ रुचि आपके साथ। जानते हैं सनमपुरी के जो मैनेजर हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर विशाल शेखर के भी मैनेजर रह चुके हैं और उन्होंने ही सनम की मुलाकात विशाल शेखर से करवाई और कुछ ऐसे विशाल शेखर ने सनम को अप्रोच किया कि वो आए और आकर के धत तेरी की गाने को गाएं। लेकिन ये गाना जो था वो काफ़ी आसान था, इसलिए सनम ने हाँ भी कह दिया और बहुत अच्छे से परफॉर्म भी किया। जब ये गाना इतना अच्छा चल गया, हिट हो गया, तो विशाल शेखर ने सोचा कि इश्क बुलावा जो सॉन्ग है उसके लिए भी सनम को बुलाया जाए। इनिशियली सनम को लगा कि ये गाना भी धत तेरी की सॉन्ग की तरह ही होगा, यानी कि बस कुछ ही देर में निपट जाएगा, आसानी से हो जाएगा, इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये गाना काफ़ी डिफिकल्ट निकला, लेकिन सनम ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इस गाने को रिकॉर्ड किया। और जब ये गाना रिलीज हुआ तब तो मानो की पूरी किस्मत ही पलट गई सनमपुरी की। ये गाना काफ़ी पॉपुलर हो गया और इसी गाने से सनमपुरी ने हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली और सभी लोगों ने सनम को और सर्च करना शुरू किया। एंड दैट इज़ हाउ जो ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक वीडियोज़ बनाते थे उनके भी व्यूज़ बढ़ना शुरू हो गए और फैन फॉलोइंग जो थी वो दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ने लग गई। तो कुछ ऐसे ही गाने जिनके कि हम बहुत बड़े फैन हैं, 60s, 70s, 80s के सुपरहिट सॉन्ग्स जिनका कवर वर्जन बनाया है सनम द बैंड ने, वही यहाँ पर अभी आपको सुना रही हूँ। सुनिए ये अगला गाना, ये रात भीगी फीगी।

0: कैसा लगा आपको ये शो? हर हफ्ते हम रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।